0: अग्ना तुट भूत महला पहला
1: तागना इंद्री तागना नारी भड़के तो पैन दाड़ी तागना पेरी तागना थी तागना देवा तागना अखी वे तक गया पे बत्ते वड़ तागी अवरा कते ले पाड़ करी।

अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंद हे कृपा निदान जगद गुरु इस संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है

परमा पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई सुको टल गुर सेवी है एहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ

साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो तुद आगे अरदास हमारी

लगाए। एक उत्तम पंथ सुने ओ गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो शरनाई। ते पट ते आप कहिंदे आ असी ते दर बा दर भटकदे रहे पर जदो गुरु पातशाह दी शरण च आए फिर तत् समझ दे विच आया। जब लो नहीं भाग लिलार उदे तब लो भ्रम ते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुंदर मैं बूढ़त थे कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो। जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जौन गर्भ न आयो। सतगुरु की शरण च आ गए ना और आके गए नहीं, ये भी ध्यान च रखियो आके गए नहीं, वो सदा गुरु ग्रंथ साहिब च ही बैठे हुए ने पट सदा लई गुरु दे ही हो गए हो। असी आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं पर गुरु दे नहीं हो पा रहे हैं। ध्यान रखियो जिहड़े हो गए मुबारक है तुहाडे चों, उन्हां दे चरणां दी धूड़ लैंदे रहिए जिहड़े गुरु दे हो गए ने। जिहड़े गुरु दी भाई लैणा जी आए शरीर गया पर आप ते गुरु दे ही हो गए, गुरु दे ही बन के रह गए। ते फिर लहणे तो फिर गुरु अंगद देव जी हो गए क्योंकि वह हो ही गुरु दे गए, वो मुड़ के वापस गए नहीं, मन गुरु को ही रह गया। असी गुरु दे होना है, असी गुरु दी शरण विच आके ढह पैना है कि महाराज हुण मेरे कोल उठण दी हिम्मत नहीं है, तां फिर ये गल बननी है। सतगुरु महाराज कहिंदे

क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस दे सो पावे सदा सिप सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया, वाजी शब्द कन्हेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत, सुख मन आय वसिया जिने इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान कीता गुरु विटो जिस दियां ए बड़ियाइया, कहे नानक सुनो संतोष शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सपागै, कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दूत दवास कीते काल कंट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से ना मर के लागे, कहे नानक तै सुख होआ तेत कार्य अनद वाजे, अनद सुनो बड़ पागियो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप, उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे, अनद तूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत मात, दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्मा दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर।

0: नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पहर दास, जियो पिंड सब तेरी दास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख नेरे। कोई ना जाने तुमरा अंत, उचे ते उचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सुतर तारी, तुम ते होए स्वाग्याकारी। तुमरी गत मित तुम्हें जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासवी सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दयावे ताए। सब थाई वे सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

तेग फतेह धीरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी।

कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ फिरत फिरत प्रभ आया पर्या तो शरणाए

अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले नानक बोले तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज बापू की शरण विच बैठ के रबी बाणी का जाप सुनिया आप जी ने। डिठा सब संसार डिठा बड़िया कोठियां वेखियां बड़िया वड्डियां फैक्ट्रियां दे मालक वेखे मगर सुख ना नाम बिन। बड़ा कुछ वेख्या बड़िया जायदातों वाले लोग वेखे सुख ना नाम बिना। समझ लिया जे सुख ना नाम तो बिना सुख नहीं। सुख नहीं बहुत देश कमाए सारी दुनिया दी दौड़ां लगियां। अज आनंदपुर साहब गए सां आखो वाहिगुरु 80-85 प्राणियां नूं केस रखा के 15-20 प्राणियां नूं अमृत छका के अज आए हां। उत्थे जा के खलो गए चौंकीदार बन के। जिस बच्चे ने दाढ़ी कट्टी आ हथ जोड़े मन गया बड़ी किरपा भई किरपा बरताई उस मालक ने जिन्हों क्या उ मन गया। अज तो नहीं सरोपे नाल लै गए सा आखो वाहिगुरु उहदे कल च सरोपा पाता। साढ़े पेज ते वेखोगे ना उन्हां सारिआं दी फोटो आउण गिआ। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। नाम तो बिना किते सुख नहीं। तन तन होसी शार जाने कोई जान। ये तन धन जिहड़ा है ना तुहाडे कोल शरीर ते पैसा ये सवाह हो जाना। इस गल नूं जाने कोई जान जानदा नहीं तो सारा संसार इनू चंबड़िया है। इनू भी चंबड़िया है तो तन नू भी चंबड़िया है। आखो वाहिगुरु। मेरा बाबा कहिंदा दुनिया दे लोको एक गल सुन लो गुरु ग्रंथ साहब पातशाह पिता जी दी। सारे संसार च फिर के वेख लो कोई सुखी नहीं लभूगा। सच है कि झूठ है बोलो। हर बंदा दुखी आ हर बंदा परेशान आ हर बंदे दी अखां च अथरू आ। ये अथरू सुक सकदे ओ अथरूआं दी जगह ते नेत्र भर सकदे ने रब दी दया नाल जे की करे वाह

आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। उन्हें 24 घंटे रब रब रब वाहिगुरु वाहिगुरु खुदा खुदा खुदा जो करता सी। कोई घर का जी तो कोल आता नहीं सी रोटी देन नू। एक जंगल च भेड़ा चारदा सी आखो वाहिगुरु। उन्हें कदी कदी उधर

बाबा मैं तेनु बचन देना किते खुदा वलों तेरिया अखा ना मिटिया जान, तेरी वडेरी उमर आ, मैं कोशिश करूँगा तेरा पोतर आवा पे तेरे मरण तो पहलों पहलों मैं तेनू ओदा मिलाप कराऊँ। उन्हें आख्या हाँ मैं मन वडड़ी आ सारे क्यों कर दर्शन पावा, पुत्रा कोशिश करी मेरा जीवन सफल होना है, मेरा गुरु कह के गया जे तेरा पार उतारा करना है ते तन गुरु गोबिंद सिंह साहिब गुरु।

सतगुर ओ मनसा का दाता सब सुख निदान अमृत सर सद ही भरपूरा। वो अमृत का सोमा सदा ही इस धरती दे उत्ते है बेटा, तू लभी लभ जो। उन्हें आख्या बापा मैं तेरे नाल वचन करदा खुदा दी ऐसी ना किते ऐसी हो जाए पे तेरे सुआस छुड़ जाण, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। एक दिन डंगर चारदा सी, भेडा चारदा सी जंगल दे विच, दूरों आउंदा कोई नीले घोड़े वाला वेख्या। सिखो अपने मन च तस्वीर बनाओ उहदी, नीले आउंदा वेख्या, वो दूसरी निशानी मोढ़े ते चिट्टा बाज वेख्या, आखो वाहिगुरु। बड़िया सारिया निशानियां मिल गईयां, पोतरा दौड़िया घर आ गया, सह चढ़िया ना पुत इधर बैठ, सह चढ़िया, बाबा दौड़ तेरी मंजिल पूरी हो गई। बुजुर्ग ने उठिया, दो तीन बार डिग पिया मंजे तो उठन लगा, उन्हें बाँह का सहारा दे के नौजवान बच्चे ने बाबे नूं आख्या आ लैके चलां। एक बार दसो कि तरह का सी बुजुर्ग पुछदा, उन्हें बेचारे की आखना, यो कहिंदा होगा बर दो।

0: अखो सतनाम श्री कहो नानक निज मत साधन को अपनी मत न साधन ली सोधन ली भाख्यो तो हे पकार भाख्यो पकार पकार के तेनू आवाजा मारिया ने जो ये बचन मैं किया इनू मन में वसा ये सुन के चले जामी सुट राज ना च सुट जामी दवानी तुहाडे कोल ना दवानी ते जेब विच पई होवे ते उहनू चार वार जिथे जिथे तुरीए ना जे बस चढ़ीए ते फिर जेब च वेने आ जे किते तुरे तुरे जाने आ ते फिर वेने इत्थों तक हरिमंदर साहब मत्था टेकण गए भी अपनी चवानी जेब चों वींदे किसे ने कढ तां नहीं लई ये जिहड़े बचन सुने जे इहनू हिरदे च वसायो फिर ये ते अमल करो भी आ जो मेरे पातशाह नामा कह रहा ये सच ही तो है बुलाना चता रहे हो इन्ने दिन जिन्हें मेरे सतगुरु ने सेवा ली आ बेअंत समा अरका तो आपां नूं मिल गया फिर कितने जिस दिन मेरे सुहास बचे तो आस्ट्रेलिया तो आण के फिर आप जी दे कोल आना असा की वार की कथा करनी आ जदों कितने मेरे सतगुरु ने लिया आप जी की सेवा करूँगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। सत श्री अकाल।
1: गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्नवाद धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिन्हां दी अपार कृपा सदका ये जो समागम हो रहे ने विशेष धन्नवाद भाई साहिब जी का आप समुची संगत का जिन्हां सदका गुरु घर विच जो गुरु संगत रौनक लांदी है आनंद माणदी है और गुरु की कृपा दे पात्र बनते हाँ। अगों भी भाई साहब नूं बेनती है कि इसे

मैं कोई न जाने तुमरा ऊँचे ते ऊँचा पग सगल समग्री तुमरे तुम ते हो सो तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आई फिरंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोविंदन सिमरो श्री हर राय।

पवन चबरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत पीरी रहा सहस तव नैन नन नैन है तो ही को सहस मूर्त ननायक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोई समय जोत जोत है सोए तिस तय चानन समय चानन होए गुरु साखी जोत प्रगट होए जोत पावे सो आरती होए हर चरण कबल मकरंद लो

गुना सुत बनता साजन सुख बंदप तांस्यो मोह बढ़ो सो कना बोयो बीज अहंग मम अंकुर बीतत औद करत अगना मृत मजार पसार मुख निरकत उंचत पुगत पूग पुगना सिमर गोपाल दयाल सत संगत।

रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख, तरन गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख्य देव अरदानव, एक तिल ताको मर्म न पावत, प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति, हर जन ताके दर्श समावत, तिसे त्याग आन को जाचे, मुख दंत रसन सगल कस जावत, रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत, रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत।

दह दिस ताए महाबिख्या को पर तन छीन अज्ञान हरियो है। जो बन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मिरत मरियो है। अनेक जोन संकट नरक पु

तान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंदप जिय तान प्रभ प्र

रोग दोख मो नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बोह भाती बिचरे अनक शास्त्र बोह खटुआ पसम लगाए तीरथ बोह भ्रमते सुखम देह बंधे बोह जटुआ बिन

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल, साहिब जमाल, साहिब बरकत, साहिब अजमतां दे मालक, सर्व सांझी बालता दे रहबर।

विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरखे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विनजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर।